0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说老话哦，蜜蜂活不下去，我们也活不下去。
2: और सुपाला ने के व्यवहार जो है नहायत ले आज हम इसके लिए वो सुख मस्माई दिखा रहे थे जो
0: था हर्ष 下的狂歌日夜不息雕琢山河
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分
4: 现在割草全部收起来牛秋天冬天吃
0: 红叶是秋的绝唱尽情挥洒岁月浓墨
5: 我们家客人躺在房间里能看到白哈巴最美的风景
0: 冰雪是冬的沉淀静候万物破茧重生
6: 冬窝子是我们四个理解中的一个家我很喜欢这里很温暖
7: 新疆是个母亲湖嘛在我儿子这一代了也养两代人了
0: 山河不老生生不息

0: 的心事，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你们活不下去，我们也活不下去。
2: और चुपचाप निकल विवाह गुहार हैं यहाँ यह तो देख आज हमें सीखा था वो सुख मस्माई दिखा रहे थे बिल्कुल
0: हे 氏下的狂歌日夜不息雕琢山河
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分
4: 现在割草全部收起来牛秋天冬天吃
0: 红叶是秋的绝唱尽情挥洒岁月浓